भालू भालू भालू भालू अवड़ निकल भालू अवड़ निकल ना भालू अवड़ ना लगवा अवड़ ना लगवा नहीं नहीं लाके अवड़ तले नहीं अपने